0: तो मेनू एकदम याद आया
1: जी
0: ते मेरे अपने दोस्तां दे मतलब रेडियो परिवार चो भी मैसेज आए
1: जी
0: ते बड़ी खुशी हुई। मतलब आपां नूं ना एक
1: बिल्कुल है जी
0: की कहिंदे हुंदे परवाए हुंदी एक स्पेशल जिहड़ा तुहानूं किसे ने याद
1: जी
0: कीता जां तुसीं उहनां दे चेतियां च जां मतलब दिमाग च सी
1: जी
0: किसे लिए आपां कहना टाइम कढ़ना है थोड़े जे देख लो। कई बार ना सोच एक दो मिनट की गल हुंदी आ
1: जी
0: पर एक किसी बड़ी बहुत वड्डी गल हो सकती है जिन्हें आप
1: बिल्कुल है
0: विश
1: जी
0: करते हैं। तो मैं वधिया लगता है मैं कि
1: बिल्कुल है
0: सानू एक दूसरे परिवार की
1: जी
0: जरूरत होंगी है
1: जी
0: ते
1: बिल्कुल
0: आज
1: है
0: ना सोचे मैं पहला नंबर ले ला
1: क्या
0: लाजन
1: बात है।
0: सैनी वीर जी तो
1: नहीं
0: भी सर
1: वधिया कीता तुसी। हां
0: नहीं
1: जी जी
0: पता की मैं फिर मेरी ब्रेक फिनिश हो जाती फिर
1: जी
0: मेनू उठना मुश्किल हो
1: हां जी
0: जाता।
1: बिल्कुल है जी
0: ते दूसरी तुसी अज जेडी शुरुआत की मलाक दी ना
1: हां जी
0: ते
1: एक नंबर
0: मेरे
1: ते छे
0: दोने
1: नंबर
0: बेटे
1: दी
0: उन्नी
1: कीती
0: हांजी मेरे दोने बेटे 19 दे आ
1: जी
0: ते
1: क्या बात है जी।
0: मैं वैसे उन्हां दी तो पर्सनैलिटी
1: जी अच्छा
0: ऑपोजिट
1: जी
0: ते कई मेनू लगदा हुंदा कि बिल्कुल मतलब एन मतलब उस कैटेगरी च फॉल करदे जेड़े मतलब जिद्दा कहंदे हुंदे ना कई
1: जी
0: बार कुदरती इंस्टा ते तुसी खोलो तो आंदी रहिंदी उस चीज बारे
1: बिल्कुल है जी
0: ते ओ मेनू मैं देखदी हुन्नी आ पर मैं हसदी हुन्नी मैं क्या भाई जे मैं कहां भाई बिल्कुल सच आ फिर मैं लगदा हुंदा अद्धा सच आ अद्धा
1: पर
0: नहीं
1: एदे चलो ए चीजा च मैं भी नहीं इन्ना विश्वास पर जेडी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट आ जा साइंस ने जो चीजा सिद्ध कीतियां ने किते
0: हाँ
1: ना
0: जी
1: किते ओ ज्यादा करीब लगदियां ने मैनू क्योंकि
0: हाँ जी हाँ जी
1: एक्सट्रावर्थ जां इंट्रावर्थ दी गल आउंदी है ओदे विच मैं तुहानू सवाल करदा जिवें तुसीं दस्सिया कि इको ही डेट दे जिहड़े ने मतलब कि
0: हाँ जी
1: तुहाडे बेटियां दा बर्थ है जिवें कि उहनां दी पर्सनैलिटी दे विच डिफरेंट तुहानू की दिखदा कि इक शाही है जां दूसरा मतलब कि ज्यादा घुलदा मिलदा जां किस हिसाब दे नाल तुसीं देखदे हो जी ओ दोवें एक्सट्रावर्थ ने कि इक इंट्रावर्थ है जां दोवें इंट्रावर्थ ने जी।
0: नहीं जिदा एक बेटा मेनू थोड़ा अपने आप ले भी करदा पर फिर जा फिर बहुत ज्यादा दूसरे ले भी करदा
1: जी
0: ते दूसरा जेड़ा हैगा टोटली अपोजिट आ के मतलब वो अपनी सेल्फ केयर करदा पर फैमिली केयर करदा
1: करदा जी
0: वो आले दुआले नहीं मतलब वो हर एक लिए करदा मतलब
1: जी
0: करदे दोने ही है काफी ज्यादा मतलब जिदा मेरा बड़ा बेटा अज जेदा बर्थडे आ
1: जी
0: वो कम्युनिटी सर्विस या होर उन्हें जिथे भी हेल्प होवे कर सकदा
1: जी
0: फिर किसी का बुरा नहीं करना
1: बिल्कुल है
0: ते छोटे नु वैसे आ के अपने अपने फिजीक ले फिटनेस ले भी अपने अपने टाइम कढ़दा
1: जी
0: ते वो ज्यादा ही फैमिली पर्सन आ
1: जी
0: मतलब जिदा
1: बिल्कुल है
0: मतलब
1: जी
0: ओनली फैमिली फर्स्ट हुंदी है। हां जी
1: जी
0: ते मतलब करदा ओनू भी हैगा जिदा वो कहंदा हुंदा मामा तुहाडे तो पेरेंट्स तो मैं ये चीज ली आ के मतलब दूसरे की हेल्प किवें करनी।
1: नहीं एक चीज मैं होर पूछांगा इहदे विच कि कदे तुहानू ये कहन दी नौबत आई है कि ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है तू कातो हर किसी दी प्रॉब्लम दे विच अपना हल करन लग जाना कुछ ऐदां दा कदे मौका आया कहन दा जी।
0: नहीं कई बार
1: जी
0: मैनू बड़े बेटे नु मैनू लगदा हुंदा है ना कई बार मेरे मेरे हस्बैंड छोटे नु भी कहंदे हुंदे आ ना
1: जी
0: भी थानू कई बार सारे लोग यूज कर जांदे आ
1: हाँ
0: तुसी
1: जी
0: उत्थे तुसी मतलब स्मार्ट होने चाहुंदे आ भी
1: जी
0: मतलब चाहिदा कि तुसी किसे नु ना करो उन्हां नु बच्चियां नु नहीं नहीं कहना आउंदा अजकल जिदा ना
1: बिल्कुल है
0: मतलब
1: बिल्कुल
0: कोई भी चीज आ जे उन्हां नु कोई किते भी ले जांदा मेरे छोटे बेटे नु ना वो आप
1: जी
0: नहीं घट प्लान करदा ओनू कोई भी मतलब कॉल करूंगा तो मित्र दोस्त ओनू ले जांदे हर एक जगह ते
1: जी
0: ओनू बेचारे नु नहीं नहीं कहना आउंदा
1: बिल्कुल है जी
0: ते
1: बिल्कुल है
0: बड़ा भी ऐदां ही है काफी जिदा हेल्पफुल आ मतलब ओने कम्युनिटी दी आ जे कोई ओनू गरीब दिसदा जां ओनू लगदा
1: जी
0: लोड़ आ फिर ओ बिल्कुल नहीं परवाह करदा ऐदां पैसे दी जां होर
1: जी
0: चीज
1: बिल्कुल
0: दी
1: है
0: ते
1: जी
0: ओ कॉलेज दे विच भी ना चीजां च बड़ा एंगेज रहा मतलब जिदा कट कलेक्शन करनी जिदा देना
1: जी
0: चैरिटीज लई है ना होर चीजां ते
1: जी
0: मतलब कुदरती सुभा हुंदा आ हुण ते
1: इंसानियत ते
0: साडे
1: फिकर
0: नाल
1: ते
0: ओना
1: हैगी
0: दी
1: है ना कोई मेरी भी यही बहुत वीक पॉइंट कई बारी अपने आप नूं लगदा तां ही मैं अज लिखिया सी कि मैं ऐसा क्यों हूं ना कि वो किसे
0: हांजी
1: भी
0: हांजी
1: तरह दी कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम आ जावे जिन्ना चिर वो कित्यों भी हल नहीं हुंदी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
0: ਹਾਂਜੀ
1: ਜੀ
0: ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਭੇਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਕਰਕੇ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ
0: ਜਿਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ
1: ਹਾਂ ਜੀ
0: ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਰਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ
0: ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੁੰਦਾ
1: ਜੀ
0: ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ
1: ਜੀ
0: ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ
0: ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਸੋਚਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ
1: ਹਾਂ
0: ਹੁੰਦੀ ਆ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ
0: ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ

0: वन दी गई रूटे रूटे बुटे माहिंदा ये मैं अभी अभी वन दी गई। लो जी आखिरी सॉन्ग जरा 3 नंबर जी
1: जी
0: हाँ जी जी

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरियाइयां नू तू हमेशा याद रखी।

जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होण तो पहला मैनू देके थोड़ा जहर जावी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ाने हानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सीनी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दारोड़ा मंजिल दे वाले चले सीनी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू

0: अल्लाह आवे माही नैणा च बसा के तेरिया उड़ीका बिच सजना
1: बिच लेके हाजिर हो रहे ने
0: लिकाना परिया उम्मीदा दिया संदा एक बारी आके सानू दर्श दिखा के मुड़ आसिया च पर जा सुगंधा।

0: लो जी बाबे हो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बता जी, क्या बता, वाकई सही गल है जी। और बहुत ही खूबसूरत गीत है, बल्ले बल्ले होई पई है। कमेंट बॉक्स दे विच ते गुलाबां दी जिहड़ी आ पूरी कह लो बारिश हो रही है और मोहब्बत दी बारिश हो रही है। और बहुत खूबसूरत सांझ है जी, क्या बात है, शुक्रिया बाबे हो, बहुत बहुत मोहब्बत
0: शुक्रिया बाबे हो।
1: जिंदाबाद
0: सारे
1: ते
0: सारे
1: जिंदगी
0: सारे
1: जिंदाबाद,
0: सजना दा ते मोहब्बत जिंदाबाद ते जिंदगी जिंदाबाद।
1: जिंदाबाद।
0: उम्मीद करते हैं अज जीरा साहब दे हिसाब नाल टाइमिंग सही बई हो। मैनूं लगदा
1: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल हुणे अपडेट आ जानी उतरो।
0: मैनूं जीरा साहब दी इस जो इन्हां ने कहा उस गल दा कोई गिला नहीं, पर
1: जी
0: मेरा गिला इन्हां ते इह जरूर है वी जे इन्हां ने कोई भी शनिवार ऐतवार मिस कीता ते ओह पक्का रहू इन्हां ते।
1: अब बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, नोट किया जाएगा।
0: आया तो हाँ ये नोट करनगे जीरा साहब ते
1: जी
0: चंगा जा हिंदी गाना ओही गल है लै के आया करो है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।

इश्क इश्क ना करिया कर जिंदे, इस इश्क ने कई बर्बाद किते। किसे तपदे थलां विच जान दित्ती हाय जान दित्ती। किसे तपदे थलां विच जान दित्ती, किसे अपने कान पड़वा लिते।

0: अगले लाइफ से, या
1: बिल्कुल
0: तो उन्होंने कहो कि एक टाइम लिमिट दे दो कि भाई इतना टाइम तू ट्राई कर ले, निकल
1: हाँ
0: दो, उसके बाद अपना प्लान बी थे आ जाओ। एक प्लान बी होना लाइफ से हर चीज से और
1: जरूरी
0: बहुत
1: है,
0: जरूरी हैगा।
1: एक बैकअप
0: एक
1: प्लान
0: बैकअप
1: जरूरी है
0: जिवें तुहाडे स्टूडियो च बैकअप प्लान तुहाडे हर चीज का होंदा हैगा,
1: बैकअप
0: और बैकअप प्लान लाइफ च होना भी बहुत जरूरी है कि
1: प्लान
0: कितने कोई
1: बिल्कुल
0: स्टक करके तो तुसीं प्लान बी ते आ जाओ। तो
1: जी
0: मेरा
1: जी जी
0: कंसर्न यही है कि जो कोचिंग सेंटर से तुसीं जा रहे हो, कोचिंग के बावजूद भी कुछ परसेंटेज 99% तुसीं सक्सेसफुल नहीं रहोगे,
1: हाँ
0: 1% ही
1: जी
0: तुहाडा सक्सेस चांसेस हैगे।
1: जी जी
0: उस तो बाद अपना जिहड़ा प्लान बी जरूर अपने नाल रखना चाहिए है, क्या था पढ़ाई के नाल नाल तुसीं कोई जॉब ज्वाइन कर लो, या तुसीं अपना कोई नाल साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। अजकल मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के काफ़ी
1: सारे आ
0: जेहड़े
1: रहे हैं,
0: प्रोग्राम बनते पे ने,
1: बड़े अच्छे
0: तुसीं
1: प्रोग्राम हैं
0: एंटरप्रेन्योरशिप में जाके काफ़ी चंगा इन्वेस्टमेंट दे अजकल साधन बन गए ने,
1: जी
0: तुसीं
1: जी
0: नाल नाल कर सकते हो, नाल नाल अपने ड्रीम नू अचीव करने का भी जिहड़ा है अटैम्प्ट कर सकते हो।
1: बिल्कुल
0: बट
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: फेल हो गए, फेल होने तो बाद तुसीं ना उठे, फिर उत्थे तुहाडा करियर जिहड़ा है खत्म
1: क्योंकि
0: है।
1: जिहड़ा फेल हो के फेल पास होना तो जिंदगी का एक वो ही
0: बिल्कुल
1: जिंदगी है, लेकिन
0: बिल्कुल
1: इतने प्रेशर इन्ना होंगे उत्ते, जो आप कोटे की गल करिए जा ईवन जिहड़े साडे सराउंडिंग होर शहरां दे विच भी कोचिंग सेंटर चलते हैं, जदों पेरेंट्स उत्ते भेजते हैं बच्चे नूं, वो इनू एक ग्रंटड मान लेंगे कि हुण उत्ते चल गया, दैट इज बस ये हो गया, बन गया है जो आप बनाना चाहते हो, उस उतों बच्चे दे जिहड़ी स्ट्रेस लैवल कितने ज़्यादा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो आप ये भी देखते हैं बड़ी दुखदाई खबर आती है कि उत्थे आत्महत्या कर ली किसी बच्चे ने,
0: बिल्कुल
1: कुछ घट गया वध गया नंबर, कुछ ऐसा हो गया है, ये एक माड़ा असर जिहड़ा आप समझते हैं कि पैंदा है बच्चों का। वो प्रेशर है जिहड़ा है उन्होंने घट मैनेजमेंट है, जिहड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये बच्चा किवें उन्होंने कर सकता है उत्थे जिहड़ा बंदा उत्थे है।
0: एक हैरानी वाली गल जड़ी सामने आ रही है, स्ट्रेस जड़ी मैनेजमेंट है, फेलियर से भी नहीं है, सक्सेस से भी आजकल स्ट्रेस हो रहा है।
1: अच्छा
0: बच्चे
1: जी
0: जड़े फेल, मतलब फेल मैं कहूँगा, नाकामयाब हो जाते हैं किसी कंपिटेटिव एग्जाम से, उन्होंने खबर आदि
1: हाँ
0: ने
1: जी हाँ जी जी
0: कोई किसी फील्ड से चला जाता, मान लो डॉक्टरी कर लेंदा है या किसी
1: जी
0: इंजीनियरिंग कर लेंदा है, उत्थे कोई इस तरह की घटना हो जाती है, हंसी मजाक हो जाता है, या फिर उत्थे तुहानू प्रॉपर तुसी अपने करियर च आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो तुसी पढ़ोगे अजकल कॉलेजेस दे विच भी सुसाइड दे जिहड़े केसेस ने काफ़ी
1: आ
0: जिहड़े है
1: रहे
0: बाहर सुनन नू आ रहे
1: आ
0: ने।
1: रहे हाँ जी हाँ जी
0: स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई कोई टेक्निक नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये नहीं है कि तुसी कोई टेक्निक तुसी उदी स्टडी कर लो तो उस स्ट्रेस नू जिहड़ा मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस तुसी अपने ही तुहानू ही काबू करना है बेसिकली।
1: सेल्फ काउंसलिंग ही
0: सेल्फ
1: होंगी है। जी
0: काउंसलिंग, तुसी कुछ अपने आप नू इस तरह किसी चीज़ से रुझा लो, जिवें आप कहते हैं खेड खेडनी बहुत जरूरी होंगी है,
1: हाँ जी
0: खेड खेडना एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। ताड़ा
1: बिल्कुल
0: कोई लाइफ से इंटरेस्ट है, तुहानू डांसिंग का शौक है, तुहानू सिंगिंग का शौक है,
1: वो भी बिल्कुल
0: तुहानू
1: सही है,
0: जॉगिंग का शौक है,
1: बिल्कुल सही है
0: अद्धा पौना घंटा लाइफ के बीच अपने आफ्टर ड्यूटी आवर्स या आफ्टर तुहाडे जिहड़े स्टडी आवर्स हैं, तुसी अद्धा पौना घंटा अपने इंटरेस्ट नू जरूर परस्यू करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ
0: तुसी
1: जी हाँ
0: किसी
1: जी
0: खेडने जाओ, तुसी डांस करो, बंद कमरे च नचो, बंद
1: बिल्कुल
0: कमरे च गाने गाओ,
1: जी।
0: सारे जिहड़े तुहाडे स्ट्रेस है तुसी देखोगे अद्धे पौने घंटे अपने आप ही सारे डिजोल्व हो जाएंगे, एंड तुसी अपने अगले दिन की तैयारी करनी जिहड़ी है
1: बिल्कुल
0: शुरू कर
1: बिल्कुल
0: दोगे,
1: बिल्कुल
0: पुराना दिन भुल के नवे दिन की तैयारी करोगे। सो बेसिकली जदों भी कोई बच्चे नूं स्ट्रेस आंदा है या कोई उन्हें लगता है कि मैं कुछ अपने नाल गलत करने बारे सोचता है, एक बारी जरूर अपने पेरेंट्स का, अपने भैन भरावान का, अपने
1: बिल्कुल
0: परिवार का ध्यान जरूर करे कि उन्होंने इन्नी मेहनत बाद 15-20 साल ला के मैनू इतने तक
1: ये किता है
0: पहुंचाया,
1: सारा होया
0: तो
1: है
0: मैं
1: उन्होंने
0: अपनी
1: अपने
0: एक
1: लिए, बड़ी
0: सेकंड की जिहड़ी भूल नाल वो सारा कुछ मिटावा ना, उन्होंने व्हाइट वॉश ना करा। जे इस
1: बड़ी
0: तरह
1: गल है
0: अपने
1: बिल्कुल,
0: पेरेंट्स का ध्यान, पेरेंट्स नाल प्यार होगा, अपनी फैमिली नाल प्यार होगा, कदे भी इस तरह का स्टेप जिहड़ा नहीं ले सकते।
1: नहीं नहीं लेना चाहिए जी बिल्कुल जी, ये तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए है, और ये मैनू लगता है कि स्कूल के विचों शुरू तो ही पेरेंट्स नू भी एक माहौल दे विच होनी चाहिए है, ताकि वो बंदा जिहड़ा कई तो बंदे काफ़ी नेगेटिव चले जाते हैं नॉर्मली, जिहड़ा ओवरऑल एक चलो बैलेंस्ड लोग बनाने कामयाब हो जाते हैं, एक बायस जेंडर बायस जिहड़ा है वो आप जो गल करिए, तो आप उन्होंने पहले ही कहता जाता है कि हाँ यू आर गर्ल, तुसी सिर्फ तुहाडे वास्ते हैगे स्पेसिफिक, तुसी इस तो बुलावा नहीं पुछना, ये एक रुझान जिहड़ा ये तुहानू कदे लग्या कि किस किस तरह का रुझान है।
0: शमी जी आपां ना हुण पुरानी गल्लां कर रहे हैं
1: जी
0: अजकल दा, क्योंकि वही पुरानी गल्लां अपने ना माइंड च हजे भी इनहेरिट हैगियां
1: है कि
0: कि
1: कितने
0: गर्ल्स नूं मौका नहीं मिलता या गर्ल्स अग्गे नहीं आंदियां। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕਰੀਏ,
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਇਸ ਵਾਰੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਸਾਕਸ਼ੀ
1: ਹਾਂ
0: ਮਲਿਕ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਦੀਪਾ ਕਰਮਾਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਇੰਨੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਜਿੰਨੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ
1: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ,
0: ਇਹਨਾਂ ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ

0: लोकी बोलते बहुत कुछ होंगे, बहुत कोई पुरानी मेंटेलिटी दी, कुछ बयान आते होंगे, बट मैनू ऐसा लग रहा है कि अपना देश जरा बदल रहा है हूँ।
1: चेंजेस आ रहे हैं
0: चेंजेस
1: अपने,
0: बिल्कुल पॉजिटिव चेंजेस आ रही ने।
1: बिल्कुल
0: हुण कोई सक्सेस जे किसी कुड़ी नू मिलता हैगा, आई गेस सारे ही लोगों नू उन्नी ही खुशी होंगी है जिवें
1: वेलकम
0: उन्हों की
1: करते
0: कोई,
1: हैं।
0: उन्हों की भैन, उन्हों की कोई घर की परिवार की मैंबर ने कि जिवें वो खुश हुई। मैं आप मैच वेख्या सी पीवी सिंधु वाला,
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी,
0: साढ़े घर चो कोई बैडमिंटन नहीं वेखता, कोई खेडता नहीं हैगा,
1: ठीक है जी,
0: सारे परिवार ने उत्थे घट्टो घट 20-25 जन ने टीवी दे अगे रह के मैच वेख्या। ते जदों उन्हें सेमीफाइनल जितया, तुसी की नहीं मनोगे, इन्ना असी नचे, मेरी
1: सही सही
0: आईएस
1: गल,
0: दी सिलेक्शन होने दे इन्ना नहीं लोकी नचे होंगे जिन्ना उत्थे नचे,
1: क्या
0: क्योंकि
1: पता
0: पूरे
1: वाकई
0: पूरे बाजार दे
1: उस
0: विच इस
1: प्रदेश
0: तरह
1: में
0: दा
1: रहने,
0: माहौल सीगा।
1: सही गल है ना।
0: ते कहिण दा भाव इही है कि अजकल दा जिहड़ा साडा सोसाइटी है वो बदल रही है, होपफुली अगे होर पॉजिटिव चेंजेस आनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: बट जे किसी कुड़ी नू रिकॉग्निशन मिलती है अपनी मेहनत नाल, उन्हें रिकॉग्निशन हासिल की है, साक्षी मलिक हरियाणा तो
1: हाँ
0: आपां
1: जी हाँ
0: कहिंदे
1: जी
0: लोएस्ट
1: बिल्कुल
0: लोएस्ट
1: बिल्कुल,
0: एक्सरेज हैगी हरियाणा
1: हाँ
0: दे
1: जी हाँ
0: विच,
1: जी,
0: हरियाणा इन नॉर्दर्न इंडिया दे विच, बट स्टिल देखो कि नहीं उन्हां नू रिकॉग्निशन
1: यानी
0: मिली।
1: एवरी क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग आप
0: एब्सोल्युटली
1: कही, ये सिल्वर लाइनिंग भी हुण जिहड़ी है धुप्प च तब्दील होंदी जा रही है, ते क्लाउड जिहड़े है उन्हां नू लगभग बस्ट कर ही लिया आपां, क्लाउड बस्टर हो चुके हैं,
0: इन्हें अब तुसी
1: उजाला आ रहा है।
0: सिविल सर्विसेज वेख लो, कोई तुसी मेडिकल दे कोई एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आंदा, सब चो कुड़ियां अगे आ रही ने। अब हुणे
1: जी
0: बोर्ड दे रिजल्ट आए उदों कुड़ियां सब तो अगे सीगियां,
1: जी जी जी
0: कुड़ियां रिकॉग्निशन हासिल कर रही ने, मेहनत कर रही ने। असी जस्ट जिवें अपने बच्चों वांग, आप कुड़ी मुंडे लईए ना, आप बच्चे ना
1: हाँ जी हाँ
0: लीए,
1: जी
0: जिवें
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को इको इको वर्गा आप सपोर्ट देना, इको की
1: हाँ
0: ग्रूमिंग देनी है।
1: फिर गल ही खत्म हो जाती
0: सारी मैं कह रहा सारी गल्लां दा अपना सार ही यही
1: है,
0: है
1: यही है
0: कि
1: बिल्कुल
0: जदों बच्चा वध रहा, उग रहे हैं, पौधा उगता हूँ, बच्चा
1: बिल्कुल,
0: उग रहा हैगा,
1: हाँ जी हाँ
0: उदों
1: जी
0: आप
1: बिल्कुल
0: उन्होंने प्रॉपर खाद देती, पानी लाता, ओदा
1: बिल्कुल
0: ध्यान
1: जी
0: लाता, ट्री गार्ड लाता,
1: बिल्कुल
0: वो बच्चे ने अपने आप ही एक वधिया जड़ा बूटा है वो बन जाना हैगा, उस तो
1: अगे
0: बाद उन्हें आप ही अपनी केयर कर लेनी।
1: बिल्कुल सही जी, बहुत वधिया सर। आखिर विच जाते जाते तुसी कोई पेरेंट्स नू, बच्चों नू, साडे सुनने वाले दोस्त जिहड़े ने उन्हां नू कोई मैसेज देना चाहोगे?
0: मेरा मैसेज बस यही है कि पेरेंट्स जिहड़े साडा टाइम ही, मैं इस तरह ज़्यादा उम्र नहीं हैगी मेरी,
1: जी
0: 15-20 साल पहला जिहड़ा सिस्टम सीगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच होंदे सीगे पेरेंट्स नाल, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ये सब चीज़ां नहीं हुंदियां सीगियां।
1: जी जी
0: असीं आ के स्कूल तो बाद पेरेंट्स नाल गल्लां करदे सीगे, उन्हां नूं दस्सदे हुंदे सी कि मम्मी अज साडे नाल स्कूल दे विच ये होया, साडे फ्रेंड्स
1: जी
0: ने
1: जी
0: ये
1: जी
0: कीता, साडे टीचर्स ने ये कीता, वो जिहड़ी एक प्रथा हैगी साडे देश की वो खत्म नहीं होनी चाहिए। हुण बच्चे
1: बिल्कुल
0: अजकल आंदे ने या तो वीडियो गेम तो लग जाएंगे, फेसबुक सारे दे फेसबुक दे विच अकाउंट हैगे, मोबाइल दे
1: वो एक,
0: गेम्स
1: हाँ बिल्कुल जी
0: मोबाइल्स तो लग जाएंगे। पेरेंट्स नूं चाहिदा है कि अपने बच्चों नूं घट्टो घट 1 या 1.5 घंटा रोज़ देन, उन्हां नूं पुछन कि तेरा दिन अज किवें लंघिया, कि
1: जी जी
0: स्कूल दे
1: जी
0: विच
1: जी
0: की होया, भावें
1: बिल्कुल,
0: तुहानूं नॉलेज है या नहीं है। मैं मेडिकल च सी,
1: हाँ
0: मेरी
1: जी
0: मम्मी
1: ठीक
0: मैनूं पुछदे हुंदे सीगे कि अज तेरा मेडिकल कॉलेज च की गया, की कीता, की चीरा फाड़ी
1: हाँ
0: कीती,
1: जी हाँ जी
0: ये भी
1: ठीक
0: मैं
1: है,
0: उन्हां नूं दसदा हुंदा सीगा।
1: क्या
0: ते इस
1: बात
0: तरह
1: है,
0: दा जदों तुहाडा कनेक्ट एस्टैबलिश हो जाना है, टेक माई वर्ड, तुहानूं पूरी लाइफ पूरे करियर अपने बच्चे की चिंता करने की लोड़ नहीं है। और
1: जी
0: जदों
1: जी
0: वड्डा भी हो जाऊगा तुहानूं दसूगा कि मम्मी मैं अज ये कीता, दसो तुहाडा क्या, तुहाडा कनेक्ट भी बना रहेगा, तुहाडा प्यार भी बना रहेगा, ते बच्चा भी तुहाडा जिहड़ा है वो बहुत अगे उहदा करियर शेप होगा।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आया अज सारियां गल्लां करके, बहुत ही वधिया जिहड़े विचार ने दोस्तां नाल सांझे कीते, बहुत खुशी हुई। तो
0: थैंक यू शमी जी, थैंक यू।
1: दोस्तों अज आपां ने गल्लां कीतियां, तुसीं सुन रहे सी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी, IAS SDM दसूहा जी दे विचार आपां सुने अज, ते बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर दुआबा रेडियो वालों, ते इस तरह ही आपां दुआवा करांगे साडे दोस्त इस तरह सुनते रहन, ते प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, ते बहुत जल्दी आपां फिर हाजिर होवांगे एक नवे प्रोग्राम दे नाल, नवी शख्सियत दे नाल। धन्यवाद बहुत बहुत, ते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, रब रखा।

अड़या लोक मार देता ने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पई जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिंद

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हार

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर।

ताई पहनने आनी बकरी पारोवे पहनने आनी बकरी पारोवे जांदी नहीं घराई चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई सोरे घर जातीए कर ली फर्जां दी कमाई जा सोरे कर दिए ले जा लट्टा भरी विदाई जा सोरे कर दिए ले जा लट्टा भरी विदाई।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की पटोलियां दी खेड मुक्की वीरां संग रोक मनाई।

इस मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे।

तो ये जीवन भला है ये किस काम का, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले, जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

सदा उसकी ही मौज में खुश रहे, जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

0: जीवन भला है ये किस
1: जी दी रचना तो बाद मैं फरीदकोट बस्ती साड़ी शहर है सुखविंदर कौर जी सदा देने जा रहा वो आन ते अपनी रचना लैके हाजिर हो। सुखविंदर कौर जी इस बार साड़े कवि दरबार के जदों आ रहे हैं वो बठिंडा के शायर कुलदीप सिंह मंगी जी की एक गजल लैके हाजिर हो रहे हैं। सुखविंदर कौर जी दुआबा रेडियो के हफ्तावारी कवि दरबार के निघा स्वागत है।
2: दोस्तों मैं सुखविंदर कौर फरीदकोट आप जी की नज़र मालवे की शान बठिंडे जिले का माण कुलदीप सिंह बंगी जो पेशे वजो एक अध्यापक ने उन्होंने लिखी हुई गज़ल आप जी सामने पेश कर जा रही हूँ। एक वारी जे झूठा ही तू दे जांदा तेरे वास कदे

सितारे खुशियां केड़े नहीं आहे रास कदे। शीशे अगे खड़के जद भी चेता आया बीतदा बीत पल।

दुख सह लियो सिदक ना हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: उन्हें दिलचस्पी दिखाई, सिर्फ वो +2 पास सी, वो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: जल्दी मुंशी बन गया। साल दे विच वो सारी लेबर का हिसाब किताब रखने लग गया। अज वो 5 साल के बाद वो ठेकेदार बन गया। हुण पुड्डा दा अप्रूव ठेकेदार है।
1: क्या
0: जो
1: बात है,
0: काम वो एक मुंशी वजो करवाउंदा सी वो ठेकेदार वजो करवाउंदा है, उन्हें रुजगार दिता हुआ है लोगों ने।
1: जी जी
0: इसे
1: जी
0: किस्म का ही सिलसिला है कि तुसी दिलचस्पी नाल कोई भी काम करो, पंजाबी भाषा नूं दिलचस्पी नाल पढ़ो, इहदे च परफेक्शन लियाओ, बहुत रुजगार दे मौके ने, तुहानूं हर थां द्वार खुले ने। बस एक ये है, कदे भी ये ना चलो कि मेरे सामने बहुत वड्डी भीड़ है,
1: जी
0: भीड़ दे
1: जी
0: विच पहचान बन जांदी है बंदे दी मेहनत दे नाल,
1: जी जी
0: दिलचस्पी
1: जी
0: नाल।
1: जी
0: ते मैं जरूर पंजाबी जिहड़े साडे परिवार ने, पंजाबी समाज है, लोक ने, तां जेकर उहनां दा बच्चा पंजाबी दे विच अगे उहनूं पंजाबी नूं पूरे प्रोफेशनली अपनाउणा चाहुंदा है, तां उस नूं हल्लाशेरी दिओ, ना कि इह कहो कि इधर जाणा है। पैरेलल जिहड़ा है, इंग्लिश भी पढ़ो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, उहदी वरतों उस साहित दी, हिंदी दा लिटरेचर पढ़ो, उस साहित दी वरतों पंजाबी च करो, उस नूं
1: जी
0: पढ़ के तुहाडी जिहड़ी बौद्धिकता है ओह उच्ची होगी, तां उहदे नाल पंजाबी दे विच तुसीं रचनाओ, लोकां नूं रुजगार दिओ, ते अखीर तक जिहड़ा है पंजाबी भाषा नाल असीं जे जुड़े रहिंदे हां, तां रुजगार इहदे च आपणे आप ही पैदा हुंदे जांदे आ। मैनूं पता ही नहीं लग्गिया कि मैं कदों एक लिखारी बन गया, लिखारी दे नाल मैनूं कदों फिल्मां दी PR करन दा मौका मिल गया, मैं कदों कबड्डी च आ गया। ये सारे
1: जी
0: काम
1: जी
0: मैं
1: जी
0: प्रोफेशनली कीते ने, शौक भी पालिया, ते प्रोफेशनल दा मतलब तुसीं समझदे होंगे,
1: बिल्कुल
0: तां
1: बिल्कुल
0: मैं पेशेवर तौर ते इन्हां कम्मां नूं लिया, ते अच्छे नतीजे आए ने, ते बहुत मैनूं पंजाबी भाषा ने जिहड़ा सन्मान दित्ता है।
1: जी। डॉक्टर साहब, तुसी बहुत ही कीमती जानकारी अज साझी कीती आ, ते असी शुक्रगुजार हाँ अपनी रेडियो दी पूरी टीम वालों। बहुत बहुत शुक्रिया अज दे सैशन लई। ते दोस्तों, अज आपां गल्लां बातां कर रहे सी पंजाबी साहित जगत दे प्रसिद्ध हस्ती ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।